दृष्टेयाता तवाचोता सोवाने हके विनष्टेयाता न एङ्यता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेका